0: लीजिए, मैं दो डायन उससे मार डालेगी।
1: अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट।
2: हाँ इंस्पेक्टर बलदेव स्पीकिंग।
1: देखिए मैं गुलमोहर लेन प्लॉट नंबर 12 से सक्सेना बोल रहा हूँ। यहाँ प्लॉट नंबर 13 में एक औरत मेरे बेटे को मार देना चाहती है।
2: क्या कहा, प्लॉट नंबर 13?
1: जी हाँ।
3: प्लीज जरा जल्दी आइए।
2: हाँ ठीक है, मैं अभी आता हूँ।
4: Do you know something? Press the damn music finger. Try this one. Oh, I like that one. Sounds kind of nice, yeah. Yeah. Hey guys and girls, with this track over here. Raju. How you getting on, Vide? Exclusive PR, Raju. He used to play the doll in the Desired Effect band. So we did some funny gigs. It was really, really good. Going around Camden, Islington and the rest of that. It was really, really cool. Thank you, my amazing bro. Let me hit you with this, yeah. Silver Finger Sing and a Gasha Wreck. Naal Khada. Let's do it.
5: Radiation, the number one station for the Bagel Asian.